मिल साध संगत पद केवल ना तो हुण साडे जुम्मे काम लगा ते असीं किन्ना कनवादे हां। सत्संग जी यकीन करो मैं पुस्तकां पढ़ के आप जी नूं बेनती कर रहा हां, उसने पुछना है जिंदगी का सफर हौले हौले तय करो, तुमको उसने बुलाना है तुम्ही को लौट जाना है। जिंदगी का सफर हौले हौले हौले तय करो, तुमको उसने बुलाना है तुम्ही को लौट जाना है। तो जब उन पूछा जाके बेटा बच्चिए तीए वह भी ऐदा ही बुलाता सत्संग जी, मिठ बोलड़ा है साजन रब जी बहुत शीरी कलाम है। उन पूछना बच्चा तेनू आ काम दे के भेजिया सी कि भजो गोबिंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाओ, तेरे खाते विचों तो कबूतर निकलिया नहीं, हुण की करा मैं। तीए बच्चिए तेनू भी यह काम दिता सी कि बाबे दे घर केवल नाम है, नाम दी पूंजी है, नानक के घर केवल नाम, इसलिए तेरे ते फर्ज लाया सी के केवल नाम जपोरे प्राणी परो एक की सरना, तैं किन्ना क कीता हिसाब ते सारन देना पैना, इसलिए अगे जिन्ना क कीता कीता आगे समझ चलो नंद लाला जो बीती सो बीती। हुण तो लग पई है, मैं शायद अगे भी बेनती कीती होवेगी, मैं बहुत बहुत चिर हो गया ना तुहाडे चरणा विच आंदे कई साल हो गए ने, ते एक ट्रक सड़क तो लैके खड्ड वे डिग पिया, हुण चलण जोगा ने खड्ड वे डिग पिया है, पर मालक की करदे ने ओनू टो करके बाहर कढ लैंदे ने, ठीक ठाक करके ओहदे विच समान लद दिंदे ने, मंजिल वल ओहदा मुंह करके ड्राइवर नूं कहिंदे चल वे बच्चा लै जा, हुण ट्रक ते विच डिग्गिया होया सी पर कढ लिया वा। एन इसे तरह मेरी बेनती है सारे अगे हाथ जोड़ के जिन्हें कल तक अजे नहीं शुरू किया हुण शुरू कर लो, मंजिल वाल नूं मुंह होवे तां फिर तां यकीन करो कि मंजिल नेड़े आई का आई, हर कदम ते मंजिल घटदी जाएगी। अजे रुख दूजे पासे नूं कीता जाना होवे लंडन नूं तुरे होइए इधर लीड्स नूं, फिर कदों आएगी मंजिल, नहीं आएगी। महापुरुष यही कहिंदे रहे है कि नाम सिमरन करो, भजन करो, परमात्मा नूं याद करो। जद महापुरुष अपना फर्ज निभा रहा है तो सानू भी करना चाहिए। एक संत महापुरुष तुरे जाते से, उन्होंने चुराहे भी देखा कि बहुत काला स्या धुआं पिया है, धुआं पिया है, नाल चेते बाल के भी सी, महापुरुषा ने भी देख लिया धुआं बिल्कुल अकड़ के खड़ा ते काला स्या नीला होया पिया, उन्होंने झट चुक लिया, महापुरुषा ने चुक लिया ते धुएं ने डंग मार दिता, जहरीला एडा सी पे पकड़िया पकड़िया हाथ नीला काला स्या ते सुज के एडा हो गया। नाल दे चेले कहन लगे बाबा जी महाराज जी पे इन्हूं रहन देना सी पिया, इत्थे देखो ना तुहाडे इसने डंग मार दिता तुहाडे हाथ दी हालत की हो गई है। कहिंदे बच्चो सुनो, गल सुनो, बचन सुनो, जेड़ा इहदा काम सी उह इह कर रहा है, जेड़ा महापुरुष दा काम है पे उह चुकर के रांभे कर दे, इत्थे तो कोई राग ही जांदा होवेगा को मंजिल ते तुरिया जांदा होवेगा उहदा लड़ जाएगा, ना कि उसनूं दारू मिल सकेगा ना दवा हो सकेगी। जद ए अपनी आदत नहीं छड़दा तां मैं अपनी फर्ज क्यों कपाही करा, जे अपनी आदत नहीं छोड़े, उर्दू दा शेर, जे अपनी आदत नहीं छोड़े हम अपनी खूह क्यों बदले। इसलिए महापुरुष दा हर एक दा करतब है, कल नूं इत्थों अगे दर्शन दीदार करांगे गुरु दी सच्चे पातशाह रहमत नाल तुक कहीए ते कीर्तन दी संपूर्णता करिए। आदर योग मेरे परम आदर योग संत बीबी जी सुंदर कौर जी तशरीफ फरमा होए ने, बहुत भागां दी बात है। जिस दिन असीं इधर नूं आउण दी तैयारी विच सी ना मार्च विच, तां भी सानूं दर्शन देण आए सन, ते इत्थे आ के भी कल मैनूं पता लग गया कि आदर जो बीबी जी भैण जी आए होए ने, ते मन गदगद होया है। हुण संगत दे दर्शन करके मन बड़ा प्रसन्न होया, गुरु सच्चा पातशाह जो इन्हां दे जुम्मे ड्यूटी लाई है ना मालक ने, तो ये नभा दे जाण, उहदा नाम जपा दे जाण। तो कहो सत्संग जी।

आप सुनने वाले लोग हैं, कीर्तन करने वाले हैं। कीर्तन एक ऐसी चीज है, प्रभु की कीर्ति करनी, और राग ताल गुरबानी और प्यार, उसके बाद जिंदगी में सिखलाई होनी, ये सब चीजें बड़ी जरूरी हैं। और सबसे ऊपर है इंसान का जो प्यार है, प्रेम है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, मैंने अपने सारे शरीर पे प्रभु का

करनी सहज नाम बजाए बिन सहज सहसा न जाए न जाए सहसा किते संजम रहे करनी कमाल सहसे जियो मलीन है कित संजम तोता जाए कित संजम तोता जाए मन तो

Pretty famous man, very famous man, Tutu. इस तरह रात ते दिन दा मेल नहीं है, इसे तरह मैं ते तू दा मेल. जब हम होते हैं, मैं भी फिरता है तो तू नहीं है. जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही. जिथे तू ना प्रकाश हो जाएगा उथे मैं ही. बाबा जी ने फिर पीता की पता होते ही हो. महाराज मैनू भी दर्शन कराओ. बाबा जी सचखंड में लै गए सामने श्री गुरु साहब का प्रकाश की लोगों को शो आ गुरु नानक बैठे. मैनू नहीं दिसना. बाबा जी कह लगे पढ़ाई तो बगैर कोई चीज नहीं मिलती. आखो जितने तक पढ़ाई ना पढ़ी. बच्चा जे पढ़ाई पढ़ेगा तो आलम बनेगा. अखा हो ही है रही. पर हुण इलम बड़ा चंगा लग रहा है उसने मास्टर की संगत. तो गुरमुख की पढ़ाई पढ़ के असी वो पढ़ते नहीं हाँ. नितनेम करते नहीं. बाणी नाल जुड़ते नहीं. जी मेरू दर्शन. बाबा जी ने प्रश्न किया साक्षात गुरु बैठे महापुरुष. पर यह नहीं कहना दर्शन होते. मैं ते तू दा मेल. तो गल दसनी नहीं जड़ी बीती. ये दर्शन ही ऐसे. ये दर्शन दर्शन पेखत मैं जीरो. दर्शन देख जीवा गुर तेरा. अज उन्हों दर्शनों शेष गंगा राम उदीकता पे कि दर्शन प्यार आखो धन श्री गुरु अमरनाथ. तीजा गुरु नानक कद समाएगा मेरे मन की इच्छा. काफी समा हो गया रात दिन सात संगत दे भांडे जूठे बजी गए. कितना समा हो गया 6 महीने का. पर प्यारी सात संगत जे किसी वेले मन डोलदा है तो आसरा यही फिर

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल और फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हन। एक, नाम बिना नरक कहीं न लेख है। नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ए शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे, वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसर तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ए भी आख्या है,

कि नाम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर्स नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किवें प्राप्त करेगा। नंबर वन, देही नू सो, देही नू काढ़, इस नू डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत करदी है, तो बाबा फरीद जी नू पुछया, महाराज आप जी ने की कीता, क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदतां, इस दे टेस्ट्स, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इस नू खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, फिर इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहते हैं इस देही नू सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। फरीद साहब आखते हैं

मां मेरा मन मेरे वस च नहीं। साडे जिहड़े ख्याल हन वो बड़ी शक्ति रखते हैं। ख्यालों का एक ट्रैफिक है, समझ लो असी उस ट्रैफिक के दरमियान च खड़े हैं। वो ट्रैफिक सानू हिट करता है, कोई ख्याल किधर नू लै जांदा है, कोई किधर नू लै जांदा है, कोई किधर नू लै जांदा है। हरेक ख्याल का अपना इन्फ्लुएंस है। कोई ख्याल सानू डिप्रेस कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू एंग्जाइटी दे दिंदा है, कोई ख्याल सानू सैड कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू वरीड कर दिंदा है। सब ख्याल ही ख्याल हैं। मन जड़ा है वो टिकाऊ च नहीं है, स्टिलनेस दे विच नहीं है। बहुत ध्यान दे नाल सुनना कि मन दे नाल फिर की कीता जाए, इसनू टुकान दी की विधि है, केड़ा अभ्यास है। आओ आप जिन्हों मैं दो तीन लाइना आज अर्ज करांगा उन्होंने लैके ही प्रैक्टिस करना, ताकि सिंपल सिंपल टेक्निक्स अर्ज कीतियां जान, ताकि उन्होंने आप एक्सरसाइज कर सको। लगातार 3-4-6 महीने तक एक्सरसाइज करन दे नाल यू विल फाइंड ए ग्रेट डिफरेंस इन योर क्वालिटी ऑफ माइंड एंड यू विल अचीव स्टिलनेस ऑफ माइंड। अभ्यास की है, बाणी च इस तरह आख्या,

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उना नालों सेपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करने वाले, अपने आप नूं सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ, अते जो विचार है उना दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट टू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू एंड देन हाउ द सेकंड थॉट इज फॉलोड बाय। कहते ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार अस्वारी कीजिए, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ, अते फिर अपने अंदर जिस तरह सी बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनू देख सकते हैं। ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरदा है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरदा है, असी अलग चेयर ते बैठ के सिर्फ उसनू वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं ते उस उन्हां नूं देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देयर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार असवारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते असवारी करो, भाव के उन्हां नूं इनडिफरेंट होके, उन्हां नालों अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकनेक्टेड यूअर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप में थॉट्स तो अलग कर ले, अपने विचार असवारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है ना, उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे ना, उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वॉच देम, सिर्फ उन्हां नूं देखना है। अपने विचार अस्वारी कीजे दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्हां नूं देखो। तुसी कोशिश करके करन दी देखो, कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नूं करना है। अपने विचार अस्वारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनूं देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नूं देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया। बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप, अते उस गैप के विच जदों के थॉट नहीं है, की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बीइंग। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बीइंग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे
ਉਤਨਾ ਉਤਨੇ ਉਹ ਗੈਪਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੈਪਸ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਸਾਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਰ, ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਅਚਾਨਕ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਵੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੀ?

ਉਹੀ ਥਾਟ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਖੋ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਕਹਾਂ ਚਲੋ ਮਨ, ਰਹੋ ਘਰੇ, ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ। ਉਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, be present, man re phir raho, mat kat jahi jiyo, kite jaan di zarurat nahi, mat ja kite bhi, aithe rahe, phir jadon man jaan lage udon ehna do panktiyan nu istemal karna, man re phir raho, mat kat jahi jiyo, eh tusi taan hi kar sakoge if you are watching the mind, जे तुसी if you have closed eye on the mind, जदों मन च कोई ख्याल आएगा फौरन लाइन रिपीट कर दो कि मन रे फिर रहो, टिके रहो। सो तुसी मन दे उते सवार हो गए हो। जितना जितना इस अभ्यास नु वधाओगे, जितना जितना इस अभ्यास नु वधाओगे, उतना उतना मन जो है अंडर कंट्रोल आंदा जाएगा, थॉट्स अंडर कंट्रोल आ जाएंगे, थॉट्स घट जाएंगे, थॉट्स का ही रौला है और थॉट्स दी डिस्टरबेंस है। जदों ओ हट जाएगी तो मन दे अंदर एक शांति होएगी, एक टिकाव होएगा, एक खालीपन होएगा। उस दे विच आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता मन तो जो डीपर लेवल है आत्मा का, उस दियां ग्लिम्स आनी शुरू हो जाएगियां, उस दी दीदार होने शुरू हो जाएंगे। सो महाराज जी मन दे मुतलक सानू इस तरह समझांदे हैं, जपो तो एको नामा, नाम जपना है, पर नाम जपण दे वास्ते सब तो पहला भांडा तैयार करना है जो है बॉडी, और उस तो बाद समझ लो कि यह बहुत ही सूक्ष्म पढ़ाई है जिस दे वास्ते तुहाडी सुरती का टिकाओ बड़ा लाजमी है। पर अगर तुहाडे आले दुआले कोई शोर मचा रहा होवे, कोई डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा होवे, तो तुसी किस तरह पढ़ सकते हो? पढ़न दे वास्ते तुहानू क्वाइटनेस चाहिए है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। पर ए रब्बी विद्या है, स्पिरिचुअल एजुकेशन है, ए अकाल पुरख वाहिगुरु नूं मिलन दी तालीम है, और उत्थे मन ने अपना शोर मचाया होया है, मन दौड़ा फिरदा है। जिस तरह बच्चियां नूं जदों रौला पांदे हन सानूं कहना पैंदा ना टिक के बैठ जाओ, असीं बड़ा जरूरी काम करदे हां, इस तरह मन नूं कहना पैंदा है कि ऐ मन बच्चे टिक के बैठ जा, ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸਿਆ, ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸਿਆ, ਖਿੰਨ ਪਲ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਜਦ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਇਤਨੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਜਾਏ? ਸੁਰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਵੇ? ਉਸ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬੈਠ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ। ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਦਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਬਹੁਤ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਹਾਂ ਚਲੋ ਮਨ, ਰਹੋ ਘਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਕ ਥਾਟ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਫਾਰ ਦਿਸ ਥਾਟ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਓਬਸਟੈਕਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਦਾ ਓਬਸਟੈਕਲ ਫਾਰ ਦਾ ਮਾਇੰਡ, ਬਿਕੋਜ ਯੂ ਆਰ ਨਾਉ ਵਾਚਿੰਗ ਇਟ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਇਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਮਾਇੰਡ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਟ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੈਨ
उस तो बाद जो दूसरा थॉट है कितनी देर तक दूसरा थॉट नहीं आएगा वो टोटल साइलेंस का टाइम होता है अंदर और उस साइलेंस के विच स्टिल जो एक्सपीरियंस करने वाली जो साड़ी कॉन्शियसनेस है फिर असी उसनु एक्सपीरियंस करते हैं. सो देन द एक्सपीरियंसर इज द वन विच इज एक्सपीरियंस्ड. सो दूसरा अभ्यास है मन और तीसरा अभ्यास है गुरु बाबा जी आखते हैं सुरती का. क्योंकि अगर दो इंसान गलबात कर रहे हैं एक दी सुरत उत्थे नहीं है ध्यान उत्थे नहीं है अटेंशन उत्थे नहीं है तो एक बंदा कुछ कही जाता है पर एक बंदा सुनदा सुनदा भी उसनु कुछ नहीं पता चलता. बाद अगर उसनु दूसरा इंसान पूछता है कि मैं की क्या तो वो बड़ा एम्बेरेस होता है कि मैंने तो पता ही नहीं चलिया कि की क्या है क्योंकि सुरती उत्थे प्रेजेंट नहीं सी ध्यान उत्थे प्रेजेंट नहीं सी इस करके वो गल कही हुई भी असी रजिस्टर नहीं की. कई दफा असी सामने कुछ देखते हैं पर साडा ध्यान कितने हुंदा होर है फिर भी असी देखने दे बावजूद भी चीज देखी नहीं होंगी क्योंकि ध्यान कितने होर सी. सो तीसरी साधना है ध्यान. इस शब्द दे विच महाराज जी ने पहली ही लाइन च यह तीन गल्लां आख दित्तियां. नाम जपण दे वास्ते जो मैथड है सब तो पहला अपनी बॉडी नू साधो शेप अप करो इस दीयां हैबिट्स नू ठीक करो इस नू मास्टर करो इस दे उत्ते अपना कंट्रोल अचीव करो सेंसेस दे प्लेजर जो सानू ड्रैग करदे हन उहनां उत्ते अपना कंट्रोल करो. दूसरा है माइंड जिसकी मैं आप जी की सेवा च अर्ज कर चुका हाँ उस अभ्यास नू करो अपने विचारां नू अलग बैठ के सिर्फ देखो ए पहली दफा ए फिनोमिनन होएगा कि यू विल बी सेपरेट फ्रॉम योर थॉट्स जस्ट वाचिंग दैम अते जो थॉट्स हैं वो ताही आ सकते हैं अगर उन्होंने को वाच ना करे. थॉट्स कैन ओनली अकर इन योर एबसेंस अदरवाइज दे कैन नॉट. इफ यू आर प्रेजेंट वाचिंग देन देर इज नो रूम फॉर द थॉट बिकॉज द प्लेस इज ऑलरेडी बींग ऑक्यूपाइड बाई यू. सो तीसरी प्रैक्टिस है सुरती दी. क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरु साडे अंदर भी है साडे बाहर भी है पर वो नजर क्यों नहीं आंदा नजर क्यों नहीं आंदा साडी सुरती च नहीं आंदा. तो महाराज जी आखते हैं अपने जीवन दे विच एक नवी चीज पैदा करो नवी चीज ग्रो करो जेड़ी एक नवे किस्म दी सुरती है नवे किस्म दी सुरती. उस दे लई सिंपल लफ्जां दे विच मैं आखा फिर मैं बाणी दी लाइन भी आखांगा. महाराज जी आखते हैं अपनी सुरती दी सुरती रखनी शुरू कर दो. सोचो पहला इसनु दास की अर्ज कर रहा है जिस तरह साडा बच्चा बाहर खेड रहा है ना असी उसकी सुरत रखते हैं कि कित्थे है किधर नू जा रहा है किधर नू खेड रहा है. एक है साड़ी सुरती कहते हैं सुरती दी सुरती रखो. बड़ा सटल अभ्यास है हर वेले सुरती नू देखो कि सुरती कित्थे है. तो तुसी असी की अचीव करांगे एक नवी सुरती जो सुरती नू देखती है. पहला साड़ी सुरती नू को देखने वाला नहीं कदे किते है कदे किते है कदे किते है कदे किते है ना एक होर सुरती डिवेलप हो गई है जड़ी सुरती नू देखती है. उस दे लई ए टेक्निक गुरु बाबा नानक देव जी महाराज दी है कहिंदी सुर कहिंदे हन सुरती सुरत रलाई है एक. ए गुरु नानक साहब जी दे वचन हन कहिंदे अपनी सुरत दे उत्ते सुरत नू रला दियो सुरत नू रख दियो सुरती सुरत रलाई है एत. अपनी सुरत दे उत्ते सुरत रखो ए अभ्यास हर वेले करो यानी अपने ध्यान दा ध्यान रखो भी ध्यान कित्थे है.
क्योंकि जितनी देर तक ध्यान अते सुरती बहुत बारीक बहुत मान्यूटली अपनी सुरती नू अपने ध्यान नू नहीं देख सकते उतनी देर तक वो आत्मा जिही सूक्ष्म चीज नू नहीं देख सकते होनी चाहिए। उसके वास्ते ये अभ्यास है महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच सानू जो फरमाया है आप जी की सेवा च मैं दसदा हाँ कि इसे ही शब्द दे विच गुरु साहब ने यह तिने चीजा आखियां। नंबर एक भांडा धोए बैस धूप दे हो अपने इस भांडे नू शुद्ध करो तो दूधे को जावो। जे भांडा मैला है शुद्ध नहीं है उस दूध पाया कि खराब नहीं हो जाएगा। फिर कहते हैं दूध कर्म फुन सुरत समायण होए निराश जमावो। दूध कर्म कहते जोड़े तुहाडे कर्म हैं ना कर्म की हैं बोलना यह भी तो कर्म ही है ना। सारी इंट्रैक्शन जितनी भी है साड़ी ह्यूमन लाइफ दे विच ओ साड़े कर्म हन। केंदे ओ दुध वर्गे सच्चे सुच्चे पवित्र होने चाहिए हन। दुध वर्गे साफ दुध वर्गे निर्मल कर्म हो। झूठ ना बोलिया जाए कौड़ा ना बोलिया जाए फिक्का ना बोलिया जाए होमे च ना बोलिया जाए किसी का दिल ना दुखाया जाए दुख ना दे किसे जी पत स्यों घर जावो। कहिंदे किसे नूं भी कदे तुहानू दुख ना पहुंचे तां तुसी पत दे नाल वाहिगुरु दे घर च जा सकदे हो। तुहातों अगर कोई शख्स हर्ट हुंदा है ते ओ निर्मल कर्म नहीं है दुध वर्गे कर्म नहीं है। कहिंदे तुहाडे कर्म दुध वर्गे होने चाहिए। सो दुध की है दुध वर्गे कर्म। भांडा की है ए शरीर ए साफ सुथरा होवे फिर दुध कर्म जो हन दुध वर्गे ओ इस दे विच दुध पाया होवे फिर मक्खन कढ़न दे वास्ते असीं उस दुध नू जाग लगाने हैं। उस दुध नू जाग लगाने ना दही पाके कहिंदे उस दुध नू जाग किवें लगाना है ताकि वह दही बने। शुभ कर्म हो गया दुध शरीर हो गया भांडा हुण जाग लगाना है। कहिंदे सुरती दा जाग लगाओ सुरती दा जाग लगाओ जिहड़ी इस दुध नू तब्दील करके उस फॉर्म च कर देगी जिथों मक्खन ने निकलना है। रब है मक्खन और रब मक्खन दे वास्ते महाराज ने यह सिनेरियो साडे सामने रख्या है यह सिमली दित्ती है। कहिंदे सुरत समायण समायण का मतलब हुंदा है जाग लगाना। पांडा तुहे बैस धूप देवो तो दूधे को जावो। दूध कर्म फुन सुरत समायण कहिंदे दुध तुहाडे पास आ गया शुभ कर्म वो है दुध। फुन सुरत समायण सुरती दी आदत सुरती दा अभ्यास एक ऐसा जाग है जिहड़ा तुसी लगा दिओ। हर वेले अपनी सुरती दी सुरत रखो कि सुरती की कर रही है सुरती की देख रही है सुरती की सोच रही है। सुरती दी सुरत रखो ध्यान दा ध्यान रखो ए दो गल्लां याद रखो। सुरती दी सुरत रखो ए किवें होएगा। हुण लंगर छकदे हो ते लंगर असीं हत्थां नाल छक रहे हां दंदां नाल चबा रहे हां पर सुरती नाल की कर रहे हैं। सुरती कित्थे है नाल दी नाल भी कम कर लो। लंगर मैं छक रहे हां सुरती कित्थे है ते जे सुरती उत्थे लंगर नहीं छक रही ते सुरती नूं वापस लै आओ कि सुरती भी उत्थे ही प्रेजेंट होवे जिथे तुसी बैठे हो जिथे लंगर छक रहे हो ताकि तुहाडी सुरती उस टोटल जो एक्सपीरियंस नू एक्सपीरियंस करे कि तुसी बुरकी तोड़ रहे हो उसनू मूँ च पा रहे हो उसनू चबा रहे हो। सुरती शुड बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग बट वेन वी डू थिंग्स वी आर एबसेंट। असी खाना खा रहे हुन्ने हाँ सुरती करके असी किते होर हुन्ने हाँ प्रेजेंट नहीं हुन्ने। सुरती दा अभ्यास इस तरह करना है हर चीज दे विच सुरत नू उत्थे प्रेजेंट रखना है सुरती दे उत्ते सुरत रखनी है। इशनान कर रहे हो ते सुरती नू देखना है ते सुरत किथे है। इशनान ही कर रही है जां कुछ और कर रही है। सैर कर रहे हो उदो सुरती नू देखना है कि सुरती सैर ही कर रही है जां किते होर है। सैर असी सिंगापुर च कर रहे होइए तो सुरती करके इंडिया च तुरे फिरते होइए सुरती भी उत्थे ही होवे। यह है सुरती दा अभ्यास। यानी कुछ भी करना है उस दे विच
ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਜਾਗ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਕਰਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਮਨ ਇੰਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ ਫੁਨ ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥੀਏ ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ। ਇਹ ਮਨ ਇੰਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ। ਇੰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਨੇਤਰਾ। ਉਸ ਰੱਸੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਐਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਗੁੱਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇਤਰਾ। ਇਹ ਮਨ ਇੰਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ ਫੁਨ ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਨੇਤਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਬਸੈਂਟ ਮਾਈਂਡਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥੀਏ ਇਨ ਵਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆਖਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫੁੱਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ। ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਉਸਦਾ ਪੇਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਮਾਲਾ ਲੈ ਲਓ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਜੋ ਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਇੰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਹਰ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਜੋਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੌਣ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪ ਜੋ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਭਿਆਸ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਚ, ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਕੀ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਪਾਂਗੇ? ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3 ਲੈਵਲਸ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਰੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਔਰ
मन दे उत्ते निगाह रखनी है, थॉट्स दे उत्ते निगाह रखनी है, थॉट्स दे उत्ते सवार रहना है। तीसरी गल सुरती दा जाग लगाना है। दुद्ध वर्गे कर्म करने हैं, निर्मल पवित्र इतने अच्छे कर्म करने हैं कि उन्होंने कंपेयर कीता जा सके दुद्ध वर्ग, और फिर उस दुद्ध नु सुरती दा जाग लगाना है। सुरती दा जाग लगाना है, सुरती दा अभ्यास करना है। इशनान करन वेले सुरती किते है, बिस्तरे उते लेटे पए हो सुरती किते है, खाना खा रहे हो सुरती किते है, कार चला रहे हो सुरती किते है, सैर कर रहे हो सुरती किते है। जिसने सुरती दा अभ्यास करना शुरू करता, उसने इसनू कंटीन्यूसली हर वक्त करना है। उस दे विच कोई फिर जो है वो टाइम अजिहा नहीं कि हुण ना कीता जाए। दिस इज ऑन गोइंग थिंग। सुरती दा अभ्यास हर वेले करना। सुरती दा अभ्यास करद्या करद्या करद्या करद्या सुरती ने इतनी शार्प हो जाना है, इतनी कंट्रोल्ड हो जाना है, इतनी माइन्यूटली देख सकन दे उसने काबिल हो जाना है कि वही सुरती दे विच एक दिन आत्मा ने आना शुरू हो जाना है। उससे ही सुरती दे विच वो वाहिगुरु जी की जो जोत है उसने आना शुरू हो जाना है। उन ज्यादा समा नहीं है, इस करके कीर्तन की जो विचारां की लड़ी आज इत्थे संपूर्ण हुंदी है। जो टॉपिक आरंभ होया सी उसनू अज इत्थे महाराज जी की बख्शिश दे नाल असी कंप्लीट कर रहे हैं। और इन्हां विचारां नू आप अपने अभ्यास दे विच लियाओ, सुरती की साधना करो, और रोजाना अपने अपने जीवन दे विच कोई टाइम जरूर कमिट कर लो। सवेरे सूट करता है जा रात नू सूटेबल है जा दोपहरे, पर एक टाइम ऐसा होवे जो तुहाडा सिर्फ अपने वास्ते होवे। उस वक्त दे विच रोजाना वाहिगुरु शब्द का अभ्यास जो है वो नितनेम दे नाल करना है, और बहुत ध्यान दे नाल जागरूकता दे नाल करना है। और उस दे नाल नाल अगर हो सके तो गुरु बाबा जी की बाणी का अभ्यास जितना बढ़ सके गुरु ग्रंथ साहब महाराज का एक पेज रोजाना पढ़िया जाए। जे गुरु ग्रंथ साहब नहीं हैं तो गुटकियां आप तो पढ़ लिया जाए। तो इस तरह अपने मन नू हर वक्त इसी दायरे दे विच रखना है। तो इस दायरे दे विच रख के जो अभ्यास करता जाएगा उसका अंदर भी शुद्ध हुंदा जाएगा, शरीर भी उसका मंदिर बन जाएगा, शरीर उसका रब की कामणी बन जाएगा, शरीर उसका सरोवर बन जाएगा। और उस सरोवर दे विच

गुरु भी धारण करो अमृत छक के और गुरु मंत्र नू फिर जपो गुरबाणी दे विचों जीवन दे वास्ते उपदेश लेंदे जाओ अते इस तरह का ग्रुप अगर कमाई करेगा तो वह जिहड़ा गुरुद्वारा होएगा वह एक रूहानी मंडल बन जाएगा उस शहर दे विच रूहानियत का होर फैलाव होएगा उत्थे दे लोकां उत्ते भी उसका असर पाएगा उत्थे दे एनवायरमेंट ते भी उसका असर पाएगा सो इस तरह असीं अपनी इस रूहानियत नूं अपने जीवन च अपने आले दुआले अपने बच्चों च लिया सकते हाँ पर महाराज जी कहते हैं हर चीज किसी विधि के नाल हुंदी है हर चीज की कोई मर्यादा हुंदी है गुर पूजा विद सहत करंग गुरु की पूजा भी कहते किसी विधि के नाल ही हो सकती है सो ए विधि है जो आप जी की सेवा च अज अर्ज कीती है गुरु वाले बनो गुरबाणी का पाठ नितनेम दे नाल करो विचार नाल करो समझ के करो ताकि गुरबाणी दे विचारां तो पता लगे सानू की कुछ करना है हुण जे असीं ना विचारांगे तो किवें पता लगेगा कि असीं अपने आप नूं पहचानना है एक पाठी पाठ करी जा रहा बाकी सारे लोग अपने घरां च सुते पए ने उहनां नूं किवें पता लग जाएगा कि असीं अपना मूल पछानना है उह ते असीं सुणांगे समझांगे विचारांगे तां ही पता चलेगा ना कि की करना है सो अपने एटीट्यूड्स अपने ट्रेंड्स टेक्निक सानू एग्जामिन करन दी लोड़ है कि उहनां दे नाल साडी ग्रोथ हो रही है जां सिर्फ रिचुअल ही निवाह हुंदा है सो बाणी नूं विचार नाल पढ़ो आपस विच बैठ के इकट्ठे होके नाम जपो जिस तरह दास ने पहला अर्ज की है पहला चार छह महीने टाइम बन के नीयत होके नीयत करके गुरु शब्द का बोल के अभ्यास करो अते ध्यान उस दे विच रखो कि जितनी दफा तुसी वाहिगुरु बोलिया तुहाडे ध्यान नूं पता होवे कि तुसी वाहिगुरु बोलिया ऐसा ना कि बोली जाओ तुहाडा ध्यान किते होर होवे हर दफा जदों वाहिगुरु शब्द कहना है उस दा सुरत नूं कायम करके कहना है और जितना इसका अभ्यास करोगे उतनी ही सुरती टिकती जाएगी उतनी उसका आनंद वधदा जाएगा सुरती दे टिका दे विच ही सारा आनंद है जिसकी सुरती टिका च आ गई उसनूं आपे आनंद आ गया उस दे अंदर फिर ब्रह्म ज्ञान पैदा हुंदा है अकाल पुरख की प्राप्ति हुंदी है जो गुरु दे दसे हुए रस्ते ते इस तरह चलता है गुरु महाराज उस उत्ते कृपा करके बख्शिश करके उसनूं सारियां ही दातां जो ओ बख्श दिंदे हन आओ प्यार नाल इस पंक्ति नूं गाओ आप जी दे इतने दिन कीर्तन द्वारा दर्शन किते हन दास तों कोई किसी किस्म की अवज्ञा होई होवे कोई गुरबाणी की विचार अपने वल्लों ते मैं कुछ नहीं आख्या गुरबाणी की विचार करदिआं कोई मेरे तो भूल चुक हुई होवे तो मैं सच्चे पातशाह तो गुरु बाबा जी तो उसकी खिमा की जाचना करदा हाँ तो आप जी ने बहुत कृपा की है दर्शन करन दा मैनू सुभाग बख्शिया है और इत्थों दीआं संगतां दे नाल गुरु बाबा जी की बाणी का कीर्तन विचारां सांझियां करन दा जो मौका बख्शिया है मैनू उम्मीद है आप इस नूं सुन के इस मार्ग ते चलोगे भी जरूर क्योंकि महाराज ने आख्या मार्ग चले तिनी सुख पाया निरा मार्ग दे मतलब सुन के ही सुख नहीं मिल जाता हुंदा मार्ग ते चलन नाल ही किते पहुंचा जाता हुंदा तो गाओ उपरंत कीर्तन की समाप्ति है।

ते जन कब हूं नहारे, ते जन कब हूं नहारे। ताल जो जाने पाशा, ताल जो जाने पाशा, ते जन कब हूं नहारे।

शिवा पर मोह है सब सर मन से कब हूं न करो शिवा पर मोह है सब सर मन से कब हूं न करो न डरो अरसों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो न डरो अरसों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो और सिखा अपने ही मन को लाल जहां गुटा उतरे और सिखा अपने ही मन को लाल जहां गुटा उतरे

0: खिलौना। अस खिलौना का मतलब है कि शस्त्रां का खिलाड़ी, शस्त्रां का धनी। अस खिलौना
1: मेरा तो नाम बबिंद सिंह। अस खिलौना सोडी राम।

तो दान न लागत निको, आन तो दान न लागत निको, आगे भले इन्हीं को दियो, आगे भले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और दियो सभी को, मोगरे में मन दे तन दे सिर लो धन है सभी को, मोगरे में मन दे तन दे सिर लो धन है सभी इन्हीं, जब जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सदान करे, आज आग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन काम भरे, इन्हीं की कृपा फुन काम परे, इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय, इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय, इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे।

करना क्यों कला पे ही तेदार ये देखे गीता अपना कच्ची पक्की सारी जो आया सो चल सी सब कोई आई बार ये जिसके जी प्राण है कुछ है मनुसारी अपन थी अपना।

सेशन लियो तकरीबन बिल्कुल समाप्ति के करीब हां कुछ हिन दास ज्यादा मिले गए हैं। पहले शब्द पढ़ के फिर आशा जी की वार की संपूर्णता ली चौबी मशक हर जोड़ू भगत बार दास पढ़ने अज का जो कीर्तन दरबार है जो प्रबंधकों ने आयोजित किया हजूर दी अपार बख्शत का निर्विघ्नता शायद संपूर्णता दे बिल्कुल करीब है। हजूर दी बख्शत का निर्विघ्नता शायद संपूर्ण होगा। बहुत ही आनंद आया है प्रबंधकों का शुक्राना करिए जाके संगत का करिए। मैं तो यही आखना हाँ कि गुरु साहब का शुक्राना करिए जिन्होंने आप रहमत की प्रबंधक सज्जन के मन प्रेरित किया उन्होंने उद्यम किया। आप जी गुरु घर वल कोट पैंडा तुरकी आए तो सतगुरु अगे होकर कोट पैंडा आगे हुई वाली बात है। थोड़ा जागना सफला होवे हर कोई जागता है। चोर जागते हैं यार जागता है बीमार जागता है लेकिन हजूर आखद जागना जागण नीका हर कीर्तन में जागना आप जी का जागना सफला है। गुरमेर करे ये जागना जागृत बदल जाए फिर कभी अख ना लगे जे अख लगे तो उदे नाल ही लगे। आओ थोड़ा जा समा होर तकरीबन ज्यादा तो ज्यादा 7-8 मिनट समाप्ति तक दास लेंगे। आखिरी शब्द है रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम इराग इजाज है। कुछ सज्जन इस आनंद भैरव भी आखद फिर थोड़ा जा समा जिवे जिवे गुरु करावे दास करी जाएंगे और